जप मन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधन हर नाम मन रमन चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितं।

मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर।

मजलस तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी पीलाए जमकाल। इत मद पीतै नानका बहुते खटिय है बिकार।

गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरमुख आप वडाई देवै सोए, गुरमुख

आए मनमुख फूले देख लगे अहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुख

सदा सुख बसहिं, सदा सच रता मन निर्मल, आवन जान रहाए, दूजै पाए परम विभूति।

सुख समत कर जाने, सोई भगत दुख सुख समत कर जाने। हर हर नाम हर राता हर कृपा कर, सतगुर मेल सुखदाता। सुन गुरमुख नाम, सब बिन से हो मैं पापा राम। जप हर हर

रथ जगत सगल दे हथा राम समरथ शरणा जोग स्वामी कृपा निध सुखदाता हों कुर्बानी दास तेरे जिन्नी एक पछाता।

मिलहै। जे सतगुर लागह साचे पाए, सतगुर सदा दयाल है। अवगुण शब्द जलाए, औगुण शब्द जलाए, दूजा पाओ गवाए। सच्चे ही सचराती, सच्चे

वडहंस की वार महला चौथा ललां बहली मां की धुन गावणी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला तीजा शब्द रते।

पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जपे हो संत हो राम नाम पौ जल बिखतारी गुर पूरे हर उपदेशया गुर विटड़े हो।

जाए। सतगुर मिले ता निर्मल होवै, हर नामो मन वसाए। नानक नाम त्याया सुखदाता, दुख विसरिया सहज सुभाए। पौड़ी जिन जग जीवन उपदेसया, तिस गुर कौ हो सदा कुमाया। तिस गुर कौ हो खनिए, जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया।

मन सो गुर सिख कहिए, जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया, तिस गुर सिख कौ हो सदा नमस्कारी। जो गुर कै पहने गुर सिख चलिया, श्लोक महला तीजा।

सच पदे। अपना कर्म उस्त राख न सा कहे की पर कर जोहन लागा कर दर राख है जे रस चाख है जो

आप अलेख कुदरत कर देखै हुक्म चलाए सोई जियो मन रे राम जप हो सुख होई अहनिस गुर के चरण सरेव हो हर दाता भुगता सोई रहाओ जो अंतर सो बाहर देखो अवर न दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट।

जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाउ। जिहि जन ओट गही प्रब तेरी से सुखिए प्रभ शरणे जिहि नर बिसरिया।

भया भिखारी अच्छत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राज पोयंग प्रसंग जैसे है अब कश मर्म।

छुटहै हम छुटकाप की। हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर जप्यो तरह तरह की, हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जप।

इस जुग में पवित्र पवित्र पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ काच बाद रह जीत जन्म जन्म के किल विख दुख भागे।

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहो, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर जस कुमर पा।

बिखम थान हुंजिन रखिया तिस तिल ना विसार। प्रभ बिसरत सुख कदे नाहे जस है जन्म हार। सलोक

रहाओ। ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी, ऐसो अमर मिलियो भगतन को, राच रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा

तिन प्रभ आप बुलायो रहाउ। हर कथा हर जस साध संगत सियो, एक मोहत ना एव मन लायो। बिगस्यो पेख रंग कुसुंब को, पर ग्रह जोहन जायो। चरण कमल सियो पाओ ना कीनो, नह सतपुरख मनायो। तावत कौ ताव है बहु भांति, ज्यों तेली बलद परमायो। नाम दान इशनान ना

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुण सत गुर दान दिवायो रहाओ। तिस जन को मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो।

खेल सब हरतनी, सालाह हो सच सब ऊपर हरतनी। सब आए हुक्म खसमा हो, हुक्म सब वर्तनी। सच साहेब साचा खेल सब हरतनी, सालाह हो सच सब ऊपर हरतनी।

सो तन गुरु शाबास है हर देश नेहा हो वेख वेख गुरु विकसिया गुर सत गुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन जिन सुन सिखा गुर मन्या तिना भुख सब जावी हर का मार्ग आखी है कहो कित बिद जाई है हर हर ते

आई। ऐसा इस हर धन का शाहर आप है संत हो, इस हर धन का शाहर आप है संत हो, जिसनों दे सो हर धन लद चलाई।

सरोवर है वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन। तुर पूरब होवै लिखया गुर भाणा मन लैन। वडभा

गुर शब्द रवै रव रहयास प्रभु मेरा स्वामी राम, प्रभु मेरा स्वामी अंतर जामी, कट कट रवया सोई, गुरमत सच पाया।

जपत निस्तरया। हर चरण त्याय सब फल पाए, मिटे आवन जान पाए, भगत सुभाए हर जप अपने प्रभ पावा। जप एक अला

नाम अखोट निदान है गुरमुखमन बसिया कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया सेवक पाए से जन मिले जिन हर जप जपिया।

गुर वचनी मन सहज ध्याने हर कै रंग रत्ता मन माने मन मुख भरम भुले बौराने हर बिन क्यों रहिए गुर शब्द पछाने।

ज्यों हर पावै भगवाना। कहत नानक तू साचा साहिब, कौन जाने तेरे काम। एक ना करम है दे वडियाई, एक भरम पवह अभिमाना। बिलावल महला तीजा।

आप प्रगटना, आप ही कट कट, आप अलिपना, आप ते अवगत, आप संगरचना, कहो नानक प्रभु के सब जचना, बिलावल महल्ला पंजवां।

संत संग समारो सास सास नह विसरै अनकत है ना तावो सफल दर्शन गुर पेटिया मान मोह मिटावो सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बनावो।

पांड हर संग सहाई महामीत तिस स्यों तेरा भेद विधा पंच बटवारई उपजियो महाखेद नानक तिन

करण कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर, नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा सिमर।

श्रेष्ठ दृष्टाए अभमान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अभिमान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अभिमान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल

तैं सब विद हर हर आप बनैया, जिस सतगुर भेटे सो कंचन होवै, जो तुर लिखिया सो मिटै ना मिटैया। रतन पदार्थ गुरमत पावै, सागर भगत भंडार खुलैया, गुरचरणी एक शरद

रख रख चरण हर ताल पूरैया हर कै रंग रत्ता मन गावै रस रसाल रस शब्द रवैया निज कर धार चुवै।

में सगले कुल उधरे नाम हमारे कार्य सीद नाम संग मनुआ गीद नामे ही हम निरपौ पहे नामे आवन जावन रहे।

हर हर करत मिटे सब भरमा, हर को नाम लै उत्तम धर्मा। हर हर करत जात कुल हरी, सो हर अंधले की लाकरी। हरे नमस्ते हरे नमः, हर हर करत नहीं दुख जम है। रहाऊ

जोगी जुगत सहज कर वासै एक दृष्ट एको कर देखिया भीखिया पाए शब्द तृप्ता सह रहा।

लकड़ी बिखर जरी मंज पहाड़, गुरका शब्द विचार जोगी, दुख सुख सम करना सोग बेयोगी, भुगत नाम गुर शब्द विचारी।

तह हर हर हर रस भोगनी रहाव। सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी, आज्ञाकारी सदा सुख पुंचय जत कत पेख हर गुनी। नह शिव शक्ति जल नहीं पवना, तह आकार नहीं मेदनी, सदगुर जोग का तहां निवासा, जह अवगत नाथ अगम तनी।

फलत फलत होहे दोहें सुहेले। अचर्ज पुरख त्याओ रहाओ, उठत बैठत हर जाप, बिनसै सगल संताप। बैरी सब होवह मीत, निर्मल तेरा होवै चीत। सबते उत्तम इहो करम, सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म। हर

गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ। ममता मार हों मैं सुख है त्रिभवन जोत तुम्हारी, मनसा मार मने मह राखै।

जे कुटंब छोड़ पर पवन करहें ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है।

इहो शरीर सर्वर है संतहो, इशनान करे लिवलाई, नाम इशनान करहे से जन निर्मल, शब्दे मैल गवाई, त्रै गुण अचेत नाम चेत है नाही, बिन नाम बिन सजाई, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै मूरत, त्रै गुण परम फुलाई।

भगत कराई। सेवड़ भागी जिनी एको जाता सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप से आना आपे कीमत कहन ना जाई। आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम पुलहाई।

अनंत तरह नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्याएणा।

तुझे पहचान नहीं, मोहे निर्गुण अनाथ शरणी आया। बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया, गुर नाम दिया कुशल थिया।

छंत प्रभ विपत निवारण तिस बिन अवरना कोय जियो सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोए जियो जल थल महियल पूर रहया एक निमख मन होना विसरै गुर चरण लागे दिन सभागे।

कारण इहो भेख निवासी किस वखर के तुम वणजारे क्यों कर साथ लंघाव हो पारे। गुरमुख खोजत पए उदासी दर्शन कै ताई भेख निवासी साच वक्त।

सच पाए। सो शब्द का कहां वास कथि अले, जित तरिय भवजल संसारो, त्रैसत अंगुल वाई कहिय, तिस कहो कवन अधार।